0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बिडिएस दिल्ली एफएजीसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
1: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
2: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
3: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
5: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
6: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाइ हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई।
5: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
6: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
5: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी व सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
6: थप आवश्यक सर सल्लाह व जानकारी लाग लगभग संघीय व प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय व स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
5: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग व तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
3: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
4: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
4: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 9861414199
6: यो कृष्ण सार एफएम
7: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

धोए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: ओहो आज दाई हाँ, नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करे ना कहतो।
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना। पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
1: ए बात तो ठीक है कहलो, साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त?
2: वहाँ ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो, भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
1: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो। कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। संपर्क नंबर 081-535-717। कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
1: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन, वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुनना, कान दम्म होइना बिरामी के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगैना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध थे करा जाए। जस्ते बीटीई, सीआईसी, आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिलत।
1: ए ओसिड हो कला से बुडू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता?
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98-84-20-697, 98-85-23-697 वो 98-014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
1: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पतालम रोज दिन देती आयल बा। ई अस्पतालम रोज दिन ढेर

0: महिनाक अन्तिम शुक्रबार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पतालके सुगर र थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइदिए।
1: नोट, यी अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरनसे हरेक महिनाक अन्तिम शनिबार निशुल्क ओपिडी सेवा देना सँगे जाँचमा 20% विशेष छुटके व्यवस्था करल बा। नेपालगञ्ज नेसनल अस्पताल बिपी चोक नेपालगञ्ज, सम्पर्क नम्बर 081-536-465, 98-239-80-665 वो 98-482-80-465।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: Toilet Bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697।
3: हेलो हेलो
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
1: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घूमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से
4: सोमवार और बिफे के दिन।
2: और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ
4: जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोताए प्यारा से कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी और पराब्दिक माँ जो सदा साथी रहा आज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो साथी आज 2083 तीन महीना आज 11 गते है, अषाढ़ की महीना है, दिन आज बीफे है यानी आज हमरे इस्लामी पर्व जो मुहर्रम है उसके आज 9 तारीख है यानी आज नवमी है, आज ताजिया चौक पर रही हैं। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415-122 के लेन में नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लेन में आओ जी। आप लोगों का नोहा शहादत नामा और तमाम मेर मुहर्रम पर्व के अगर आपका मूवी सुने का है तो आप 98-55-96-306 मैसेज भेज के अपने मन पसंद के अपने साथी भाई का यार दोस्त का घर परिवार का सुनाए सका जात है। यही कार्यक्रम में यहाँ जो प्राइज कराए हैं जो आप लोगों के माना जाना हुआ नंबर वन ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है जहाँ से आपका टी शर्ट पुरस्कार दिया जाए, उनके पूरे स्टाफ का उनका और तमाम उनके पूरे सदस्य का हम लोग दिल से यही कहा जाता है कि कार्यक्रम प्राइज कराया जाता है। तो जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा पीस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दौरा सलवार सब मेरे के कपड़ा असियत हैं वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो पहला नंबर में है आप लोग एकदम ध्यान में सुना जाए, पहला नंबर में है पंडित भरम सबसे धनी पंडित को रहा है यानी सबसे बड़ा पंडित एक नंबर में और दोस्त में यहाँ सबसे गरीब दोस्त को रहा है। हाँ तो साथी दोस्ती माँ यानी सबसे गरीब दोस्त आप लोग सोचा जाए को रहा है और पंडित में यहाँ सबसे बड़ा पंडित को रहा है। तो दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। तो साथी आप लोग नंबर माँ जुड़ा जाए सुना 81-415-122 के लेन जो ये कार्यक्रम चला था आप के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज़ से जो 1 बजे से 3 बजे तक रहा था कार्यक्रम जिमा आपका फ़ोन कर पड़ी। तो इससे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए तो ले सुना जाए प्यारा से नोहा, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जाए प्यारा से नोहा।
1: हाम्रो बीए भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो, सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
2: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन,
1: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
2: होइन हामीसँग अझै आशा छ, मैले शुभश्री IVF क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
3: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री IVF क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
1: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो,
2: धन्यवाद शुभश्री IVF हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
3: थप जानकारीका लागि शुभश्री IVF क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 98-61-14-16-99।

हाँ तो सरताई प्यारा से नोहा सुनागा, क्या नबी का मैं प्यारा नहीं हूँ। खैर आप लोगन के यहाँ अच्छा लाग हुई तो आप लोग भी नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लाइन में आ जाए। नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आज ये हमारे देश विदेश पड़ोस भारत के तमाम अन्य देश के साथी। तो कार्यक्रम का आप लोग ऑडियो वीडियो दोनों सुना देखा जाता है तो साथी नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लाइन में। और अगर आप लोगन का अच्छा अपने मन पसंद के मुहर्रम पर्व के कोई भी मूवी सुने का है तो आप मैसेज में पठवा जाए 98-55-96-36 में, जैसे भी उसका हम समावेश जरूर करवे। ये कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं, जो आप लोगन के माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन में है, जहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जाए। तो साथी जहाँ हर मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब कपड़ा सेट हैं, वहाँ से आपका पुरस्कार दिया जाए। तो जैसे पहला नंबर में है सबसे बड़ा पंडित दुनिया में, सबसे बड़ा पंडित को है, ऐसे दुनिया में सबसे गरीब दोस्त को है। हाँ तो साथी दोनों सही उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जाए। ऐसे मैसेज आएगा, मैसेज भेजे वाले हैं लेकिन ये सर्वप्रथम संचालक मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। आपका मुहर्रम पर्व के तरफ से आपका पूरे रेडियो परिवार का प्रार्थिक में यहाँ जो को हुई उनका, तो प्रार्थिक में यहाँ चंदा जी हैं तो कहने सब लोग इनका मुहर्रम पर्व के तरफ से बहुत ढेर से घर शुभकामना, अच्छे से मुहर्रम मनावा जाए हिल मिल के सब कोई। हाँ ये मैसेज भेजे वाले हैं बिजनौर से, मैसेज भेजे ने मुकेश कुमार बरनवाल जी, कहने मियाँ जी आपकी आवाज़ आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था। अब हम बिजनौर से बात करी थे आपके मैसेज में पठवा है, अगर कोई कमी कमजोरी हुई उसका अपन छोट भाई बनाए के समझ के उसका शामिल कर लिया जी हमारा मैसेज, ठीक है कोई गड़बड़ नहीं है। तो इन कहने की कोई प्यारा से अपने मन पसंद के कोई प्यारा से पर्व जो मुहर्रम के है ऊपर नोहा कबूतरनामा शहादतनामा जंगनामा हुसैन के तख्ती जो भी आप सुनाए दिया जी अपने मन के, आपके मन के तो हमारे मन के है, जब आपके मन तो हमारे मन है। और हम पूरे विश्व में जितने लोग ही कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो सब सुनत देखा थे सब लोगन का सुना चाहते हैं। सबसे पहले मियाँ जी आपका आपके प्रारंभिक में है जो है तो चंदा जी हैं, तो कहने दोनों जने का और दिल से नमस्कार सलाम भी करी थे, तो वालेकुम सलाम नमस्कार है। ऐसे दूसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं नकीम अंसारी जो जिला बहराइच उत्तर प्रदेश भारत गांव बख्तावर गांव मगर बम्बई में हैं, कहते मियाँ जी हाजी अली बाबा पर हन और बाढ़ बहुत ज़्यादा आवा है, पानी ज़्यादा बम्बई में बहुत ओवर पानी गिर चुका है, हाजी अली बाबा के मज़ार से आदमी का भी हटावत हैं और प्रशासन भगावत भी है कि बहुत सैलाब ज़्यादा है हाजी अली बाबा पर से बाढ़ ज़्यादा है। तो कहने नकीम अंसारी के चिन्हे जाने वाले हमका भी कोई नोहा अच्छा सुनाए दिया जाए मियाँ साहेब, ठीक है हम आपका नोहा और मुहर्रम पर्व के हर मेर के माँ सब मूवी सुनावा जी। कहने हमका नकीम कहके चिन्हे जाने वाले सब लोग इनका मियाँ जी आपका और चंदा दीदी का विशेष कहके, और चंदा दीदी कहीं ये कहते कि चंदा दीदी कार्यक्रम कहने चलावत हैं, चंदा दीदी कार्यक्रम नहीं चलावत हैं तो हम लोग थोड़ा नहीं बीमार हो जाओ जाते हैं, ऐसे कोई विशेष काम पर जाते जानते हो कि सारंग के छाता जानो तो ऐसे ही कार्यक्रम जानो, कोई बाहर के काम आएगा तभी छूट गया इका करे लागो बाहर के काम छूट जाते तो ऐसे हो जाते हैं, मगर कार्यक्रम तो सब पेक हैं आपके शुक्रवार बराए के बाकी सातों दिन के हफ्ता के पूरा हफ्ता 1 से 3 बजे तक कार्यक्रम रहा था। अब ये कि कोई इधर उधर काम पड़ गया तो थोड़ा गाना गाना बाजत है तो थोड़ा वही का सुन के इंजॉय लिया जाए वो अपने दिल का तसल्ली मिटाओ जाए, कार्यक्रम तो सब चलत हैं। तैनो कहने कोई नोहा अच्छा सुना दिया जी, ऐसे दूसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं अमरलाल सोनी जी जेसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से, साथी हैं रघुनाथपुर के अशोक सोनी कुड़वा के ओमकारनाथ सोनी प्रेम लाल आरती पूजा ज्योति सीता गीता अंजनी और तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहिए।
ऐसे खजुरा बाजार जो मैसेज भेजे हैं पहुना पान भंडार से, जो पान बेचे वाले जो हमरे बहुत जिगरी श्रोता हैं नान बाबू पहुना जी, ये कहने कि आपका पूरे रेडियो परिवार का मियाँ साहेब मुहर्रम पर्व के तरफ से बहुत ढेर सैगर शुभकामना और मुबारकबाद आपका भी, आपके पूरे घर परिवार फैमिली यार दोस्त जत्ते आपके साथी संगी सब लोगन का हमरे पूरे रेडियो परिवार के तरफ से नान बाबू पहुना जी बहुत ढेर सैगर शुभकामना और मुबारकबाद है। इन्हों कहने कोई मुहर्रम पर्व के अच्छा मूवी सुना दिया जी, हम अपने घर परिवार का यार दोस्त साथी संगी का सब लोगन का सुनाओ चाहते हैं। ऐसे दूसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले हैं, मैसेज भेजे नहीं जो रजनवा बांके से महमूद खान जी, ये लिखने कि मियाँ जी नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम मियाँ जी, आप खिचरा में लीदा खाएं चंदा जी, खिचरा में लीदा नीक लागत है कि नहीं? नहीं नीक लागत है, नहीं नीक लागत है, नहीं नीक लागत है, नीक लागत है, ये तो मंगावा जाए हमरे चंदा जी कहते हैं खिचड़ा में लीदा मंगाओ दादा महमूद खान यहाँ से, तो अच्छे से खावा जी, कैसे देसी घी डाल के बनावा थे गांव घर के घी, ओवर घी रहा था भैंस वगैरह पाला था, तो कहने मियाँ जी खिचड़ा में लीदा खाई लिया जाए और आवा जाए हमरे गांव में मुहर्रम देख लिया जाए। ठीक है, अब कहागा महमूद हसन खान जी, तो ये कहने कि हमका महमूद कहके चिन्हे जाने ले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते, जैसे बैदू का यादव का और कहने कि गोमती बनिया का, अपने पोता जो हसनैन खां हैं और हमरे जो भैया मुबारक खां जो सऊदी में हैं ट्रक ड्राइवर हैं उनका, यानी गाड़ी के ड्राइवरवा हैं उनका भी विशेष कहके सुनाओ चाहते आपका, आपके पूरे परिवार का धन्यवाद है। इन्हों कहने मुहर्रम के कोई वो सुना दिया जी, तब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जाई आप लोग मुहर्रम पर्व के गीत।

0: हाँ तो सुरताई प्यारा से चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। खैर आप लोगन का जो अच्छा लाग हुई मूवी तो साथी से आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लिए नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 009-7081-415-122 के लाइन में आवाज जी। हमरे जो देश विदेश के तमाम साथी लोग ये कार्यक्रम जो आप लोग अति से सुना जाता है आप के प्रिय रेडियो किसी सार एफ एम 94 MHz से चलाते है, तो इससे आप लोगन के तमाम मैसेज है हमरे हाथ में मैसेज भेजे वाले हैं। कृष्णा परियार जो ये मैसेज भेजी ने संगम टेलर से, इन्हों लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार, तो नमस्कार है। और कहने कि मियाँ जी हमका कोई भी मुहर्रम पर्व के अच्छा अपने तरफ से मूवी सुनाई दिया जाए, मूवी सुने वाले हैं जो ये संगम टेलर के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोगन का सुनाओ चाहते हैं। जैसे सुभाष परियार हैं और कहने मोहम्मद अफरोज हैं और तमाम साथी लोग हैं, सब लोगन का सुनाओ चाहते धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजी नहीं लिखी नहीं, सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। जावेद खान जो जिला बहराइच उत्तर प्रदेश भारत जो गांव बक्सी गांव से मैसेज भेजी ने कहने कि अपशिक बजे वाला कोई भी नोहा और जंगनामा कबूतर नामा है जो सुनाई दिया जी, आपके कार्यक्रम हम बहुत प्यार प्रेम से सुनित है और ये कार्यक्रम जो आपके है बहुत अच्छा लागत है और हमरे तमाम घर परिवार माँ सब पूरे परिवार का विशेष कह के अपने पापा इश्तियाक खान का और मियाँ साहेब आपका, चंदा दीदी के यहाँ पवन दादा का, सब लोगन का सुनाओ चाहते धन्यवाद है। और कहने कि परशुराम आज़ाद का, तो परशुराम आज़ाद अगर रेडियो सुनत हुई हैं तो ज़रूर सुनत हुई हैं, तो कोई साथी फोन लाइन में हैं उनका पहले अब स्वागत कैली, देखी को कहाँ से हैं, देखी कहे से आए गए हैं, घाम ज़्यादा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ साथी उनके आवाज़ ना आया होते फिर से आप फोन काट के फिर से लगावा जाए, कोई बात नेटवर्क में यहाँ कमी कमजोरी हो जाते, कोई प्रॉब्लम हो जाते तब फोन नया होता है। तो इसे हमारे स्टूडियो के नंबर है 015-122 के लाइन एकदम नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 009-7081-415-122 के लाइन में आवाज जी। कार्यक्रम जो आती सहित आप लोग सुनाया थे कार्यक्रम किसी सारे एफ एम नेपालगंज 12 बिलासपुर से ये कार्यक्रम चला था। हाँ तो साथी जो हमरे जो किसी सारे एफ एम चैनल जो है आप लोगन के माँ आइडियो वीडियो सब आप लोग सुना जाए देखा जाए, किसी सारे एफ एम सर्च किया जाए, सबका हमरे जितने माँ कार्यकर्ता हैं आपका सब कोई माँ सूचना समाचार मनोरंजन हर घड़ी माँ हर प्रत्येक घंटा के बीचे माँ फरक फरक के माँ सूचना समाचार मनोरंजन आवत है, तो आप लोग सुनते रहा जी सुझाव सलाह दिया जाए। कोई साथी देखी को कहाँ से, नमस्कार
1: नमस्कार सलाम वालेकुम।
0: सलाम सलाम। और भद्रा जी
1: हाजू
0: और बढ़िया है?
1: हाँ बढ़िया है। मोहर्रम को मुबारक हजुरलाई, हजुर को पूरा जुन धर्म मान्नुहुन्छ सबैलाई।
0: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मुहर्रम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद है भद्रा जी ना।
1: हजुर
0: और नवा नवलो बताओ?
1: बस बढ़िया है जी, नवा नवलो धूप लगा है आपके मुहर्रम से, बारिश हो जाए यही दुआ करी थे।
0: हाँ बारिश सब होने पर है, आज तो हमका लागत है जो हम रास्ते में काम खत्म हुई जी हमार, बहुत तगड़ा घाम रहा है, आँखी हमार काला काला हो चाहे तो हरा हरा हो जा रहा है।
1: अच्छा चश्मा नहीं लगा हो तो?
0: नहीं गर्मी से का।
1: हाँ गर्मी से चश्मा तो लगा चाहिए।
0: चश्मा का कहूँ चश्मा कहूँ देखा नहीं, यहाँ से तो काम देखी थे वे बैठो। और भद्रा जी
1: बाया ठीक है जी।
0: आम केले केले सब खाए ली हो आए?
1: वो बेटा थे गोपाल दाई लिया है ठेका, और डबल समझे जी खाते कि नहीं खाते बेचारा।
0: तो तू का नहीं देते है?
1: हम चल नहीं पाए थे चली तो धनबाद लगा है कभी दार बीजा थोड़ भेजा रहा हूँ, वही भी वो कीड़ा लगा हुआ सड़ा वाला
0: कीड़ा।
1: हाँ सड़ा वाला
0: खराब वाला है नहीं।
1: हाँ
0: तेस्तो खानु हुंदे ना मरी मरी को गाय भान ले पुण्य करनु ठीक हुंदे ना। हो के हो ना ते भंसा उदी भाषा में मरी गाय बाभन का पुन। अब कीड़ा मकोड़ा भय को सरे गले को आम को खान सा पैसा फेंको तमाशा देखो जहाँ बम्बई हो या जहाँ भी जाओ हर जगह पर देखो तमाशा की नहीं। अच्छा क्वेश्चन के उत्तर दे, सबसे बड़ा बिस्मा पंडित को है और सबसे बड़ा दोस्त सबसे गरीब बिस्मा दोस्त को है?
1: दोस्त
0: और पंडित
1: सबसे बड़ा तो अल्लाह है भगवान
0: ना भगवान नहीं सुना ना सबे बंदा बिस्मा यानी संसार में पंडित को ठूलो छा यानी सब बंदा ठूलो पंडित को हो अनि सब बंदा सानो दोस्त को हो।
1: तो अभी ना तो धनी जस्तो भन्नु भएको छ धनी र गरीब
0: के धनी राम। धनी राम भद्रा सिंह है नहीं। तो ले ठीक है ना। नमस्कार
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी भद्रा सिंह सिरपाली रहे सी गाँव बाके से। तो साथी ऐसे सुने कैसी 4-15 एक से बैज के लाइन में आवाज़ है। एक मैसेज हमारे हाथ में है, मैसेज का हम पढ़ दी कैसे मैसेज पहले के रहेगा है। मैसेज भेजे वाले हैं लिखी नहीं, सबसे पहले मियाँ साहेब आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। कहने आंधी आवा पानी आवा बहुत भवा नुकसान। चंदा जी बहुत कर्रा केस है, बहुत कर्रा केस है। तू तो बही हंसी हो हम रोवे लागब। आंधी आवा पानी आवा बहुत भवा नुकसान। और प्रार्थी जी हंसे बोले मियाँ जी जनो है गुस्सान बताओ हम गुस्सा। हाँ ये मैसेज को भेजा है जान तो बिंदुसरी ठाकुर नीतू हेयर कटिंग सैलून खजुरा बाजार पेट्रोल पंप से। तो ये लिखी ने कि मियाँ जी कोई भी पर्व के ये मुहर्रम पर्व के नोहा वगैरह अच्छा सुनाई दिया जाए। साथी हैं शंकर मुरारी किशोरी दिलीप और तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहिए। तो साथी अब हम चली थे पहले व्यापारी विज्ञापन के बाद ना सुना जी प्यारा से मुहर्रम पर्व के ना नोहा या कबूतरनामा या जंगनामा कुछ भी सुना जी अच्छा। या तो आप लोग फरमाइश पठवा जाए।

0: California. Extreme energy drink.
1: Beer Dental.
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-5323-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
2: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-5313-366 र 98-85-49-451।
5: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जीवनको लागि।
7: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबिनबाट अपरेसन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनु भएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-5330-220 र 98-41-586-979। 081-5330-220 र 98-41-586-979।
8: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
9: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
10: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
9: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिक्स, हार्नी, हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता कंसल्टेंट सर्जन

0: अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
1: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
0: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
1: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

हाँ तो सरता ही प्यारा से मुहर्रम पर्व के जो सुनागा ऐसे जो कार्यक्रम में यहाँ जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए, जैसे सबसे बड़ा पंडित को है और सबसे गरीब दोस्त को है। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। कहाँ से दिया जी आप लोगों का बताए थे, जो आपके माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 माँ है वहाँ से आपका टी शर्ट देवे। हाँ तो साथी इसे सुने कैसी 415-122 के लिए नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 009-70-81-415-122 के लाइन में आवाज़ है कार्यक्रम में। यहाँ जो अगर आप लोगों का मैसेज पठवे का है तो 98-55-96-306 में मैसेज भेजा जी, वहाँ अपने मन पसंद के जो भी आप नात मुहर्रम पर्व के जो भी नोहा असाहद नामा कबूतर नामा जंग नामा हुसैन के तख्ती जो भी आप करबला की कहानी जो भी सुना चाह जाते तो आप मैसेज में लिख के पठवा जाए। हाँ तो साथी ऐसे जो मैसेज आएगा है मैसेज भेजे वाले हैं ये नेत्राम पाल पठैन है ये घनापुर पिपरावा बांके से लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार, तो नमस्कार है कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम के तारीफ जत्ता भी किया जाए उतने कम है मियाँ साहब, कोई प्यारा से मासिया हो तो सुना दिया जाए। अब देखो फिर मासिया कोशिश करबे तो मासिया हो तो सुना देवे, वो कहने कि मासिया कहे से आखिरी आखिरी त्यौहार है हम आपसे मैसेज में लिख के पठवा रहा है मगर आप हमारा मैसेज पढ़ा नहीं गा। साथी आपके मैसेज हमरे बाद में मिला, हम आपके मैसेज हम रखे हैं तो आज पढ़ी थे, तो कहने कि कोई भी मासिया सुनाए दिया जाए। तब हम चले थे पहले 2 बजे के टाइम चेक, टाइम चेक के बाद में कुछ नहीं कुछ तो आप लोगों का ज़रूर सुनेब, तो आप लोग सुनते रहिए रेडियो किसी सारे फिल्म।

0: के साथ हम राजी फोन करते राजी सुने कैसी 4-15 से भाई के लाइन माँ कैसे कार्यक्रम जो आप लोग इनके घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश हर जगह चलत है आपे के प्रिय रेडियो किसी सारे पे 94 जो देखा भी जाते है सुना भी जाते है
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजे को छ
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
3: हरेक सामानको खरिदमा 1,000 देखि 20,000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्षसम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि।
2: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ। स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अगाडि।
3: सम्पर्क 97051148470।
2: सोफा हब नेपालगञ्ज,
3: विश्वासमा नम्बर एक,
2: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
4: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
5: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
5: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
5: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: अरे रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लड़कियां में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है किसी सारे फिल्म 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से
4: सोमवार और बीफे के दिन।
2: और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ
4: जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज से।

0: हाँ तो श्रोता, ये छोटा सा व्यापारी प्यारा से जो ये आप लोग सुनागा, खैर बहुत अच्छा मूवी रहा है मुहर्रम पर्व के। तो साथी इसे सुने कैसी 415-122 के लाइन में आवाज आए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आवाज हमारे देश विदेश पड़ोस भारत के और तमाम साथी लोग जो हमरे नेपाल से बाहर के कोई साथी फोन लाइन में आए रहें चले गए हैं कि गए। हाँ तो साथी, हाँ कोई फिर आए गए हैं, देखिए को कहाँ से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ
1: वालेकुम मियाँ जी।
0: वालेकुम सलाम, आपके नाम?
1: हम मकबूल खान राजा से बोली थे।
0: अच्छा मकबूल जी
1: जी,
0: आपके आसपास में रेडियो बाजा था उसका बंद किया जाए?
1: जी बंद है।
0: और अच्छा है?
1: हाँ सब बढ़िया है मियाँ जी, आप
0: बस बढ़िया हो चाहिए ना। तो और बताओ, मुहर्रम की तैयारी कब तक है?
1: हाँ मुहर्रम की तैयारी तो हम लोग भी करा जाते हैं, अब स्टार्ट करागा है।
0: तो आज तो चौक पर बाबा आई हैं नहीं?
1: हाँ आज चौक पर बाबा आई हैं।
0: ठीक है, अच्छे से मुहर्रम किया जाए, सब कोई हिल मिल के खुशी खुशी से, बस यही हुआ है। तो जैसे ही माँ हम जो क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन के उत्तर दो।
1: अब क्वेश्चन के उत्तर लिया जी, हम जानते ही हैं तो कहाँ बताएगी।
0: जैसे सबसे बड़ा पंडित को है एक नंबर में, हम सबसे गरीब दोस्त को है।
1: मियाँ जी हमका नहीं पता है।
0: एक है बटिया भर खिचरा में लीदा पी हो खाई ले हो। हाँ
1: तो खिचरा लीदा तो खाओ ही जी, बनावा जी तो
0: खवाए नहीं, एक को दिन खिचरा में लीदा
1: है। अरे तो मियाँ जी फोन है आपके नहीं लागत रहा है, दावत दे दी मियाँ जी आई जाए।
0: तो का फोन नहीं रहा, नंबर नहीं रहा है?
1: नंबर नहीं रहा मियाँ जी, रहा है अब तो मोबाइल हेरा ही गया है। मियाँ जी सुना जाना
0: है
1: हमका अपने आवाज में एक तो मासिया सुनाई दी जा, आदमी बहुत यहाँ बहुत देर से बैठे हैं।
0: अरे मासिया तो भेरी थे, देखो मासिया हुई तो सुनाई देवे ना
1: अपने आवाज में सुनावा दे।
0: अब हम तो एकदम बहुत जो परेशान है ना।
1: हाँ
0: ठीक है, कोशिश करबे ना।
1: ठीक है जी,
0: ठीक है, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: हाँ साथी रांझा से रहे मकबूल खान जी, खैरे हमरे बहुत पुरान श्रोता हैं, आज कोई ने कहाँ याद आएगा तो कार्यक्रम में सहभागी होइए, वो अपन प्यारा से आवाज़ पूरे विश्व में पठाई दिन। तो साथी से आप लोग भी आवाज़ आए सुने कैसी 415-122 के लाइन में नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में आवाजी। कार्यक्रम जो आप लोगों के 1 बजे से 3 बजे तक रहा था, कार्यक्रम जो आपका है शनिवार से लगाए के बीफे तक बराबर कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक है। इमां फरक फरक नाम है कार्यक्रम, सब एक टेम है, यानी पूरा 1 से 3 तक कार्यक्रम सब हैं शनिवार से लगाए के आपका एतवार तक। तो अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में सुना जाए कुछ मुहर्रम पर्व के नात कवाली या जो भी नोहा वगैरह, या तो मासिया हमरे चंदा मैडम हेरिन है कि नहीं हेरिन है, देखो मिला कि नहीं मिला तो कोशिश करा जाए।
2: अब सुनोस श्री स्टील्स रेडियो कथा तेसरो तथा अंतिम भाग। शर्मा जी को घर लाई भूकंपले हल्लाई रहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्, तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि। के तपाईले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाई आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा मुटु चाहिन्छ। मुटु
5: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
6: अनहा के बेटे हजरत इमाम हसन और दूसरे बेटे इमाम हुसैन का, ये उनके बचपन की बहुत ही मशहूर बात जिसको हसनैन की तख्ती के उनवान से लोग जानते हैं। ये दोनों ही भाई बचपन में एक दिन एक तख्ती हसनन और एक तख्ती हुसैन, दोनों भाई अपनी अपनी तख्तियाँ लिख कर लाते हैं और अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी जान, आपको ये फैसला करना है कि हम दोनों में से किसकी लिखाई बेहतर है। तो फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
7: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
8: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
9: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारो भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
10: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते है। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़ती स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
9: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई की है से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ है शारीरिक अपांगता होए से भी बची सका जाता है।
10: जानकारी राहक चाहिए, कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
5: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज।
11: दल का घराना कल बल मेरा जुल्म बनो, मैं सहेला है प्यार।

0: Go le ponia. Extreme energy drink.
1: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
2: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे के साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा कहिया आजे लेके जाई थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
2: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9804483697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465, 9829408665 और 9842808465।
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री आइबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 9861414900।
5: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
7: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
8: तपाईलाई थाहा छैन, नेपालगंजको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
7: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
8: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चरिस्ट। एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
7: अनकल सेवाहरू।
8: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिशा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
9: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी, नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
8: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स सबै सुविधा एउटै छानामुनि साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा।
2: चर्चा छ मार्केटमा हाम्रो नाम घन्किन्छ।
3: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
4: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथन गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
3: विशेष सुविधा
4: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 से 5 तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
5: देर न कीन जाए आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 530 598।

0: हाँ सुरताई प्यारा से जो मासिया सुनागा हमरे मकबूल खान जो रांझा केर परेशान थकी गन बाप रे बाप। हाँ तो सुरता आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 एक से बैस के लेन में जो विश्वमा सबसे बड़ा पंडित को है और सबसे गरीब दोस्त को है तो दोनों के क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए। उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जाए। टी शर्ट कहाँ से दिया जाए आप लोगन जान जाओ जाए कि आप लोगन के माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 1 माँ नंबर 1 टेलर है वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए जहाँ कुशल कारीगर द्वारा हर मेर के कपड़ा लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेर के कपड़ा सिया बनाया जाता है वहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जाए। तो साथ ही ऐसे एक कार्यक्रम जो आप लोग आपे के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 MHz से सुना जाता है देखा जाता है तो हमारे स्टूडियो के घड़ी में 2:47 हो चुका है। तो साथ ही ये कार्यक्रम किसने सारे FM 94 MHz से जो ये वार्ड नंबर 12 बिलासपुर बाके जो चैनल है पूरे विश्व में ऑडियो वीडियो सब जाते हैं आप लोग देखा भी जाते हैं सुना भी जाते हैं तो सुना है कैसी 415 122 के लाइन में नंबर में जुड़ा जाए और मैसेज भेजे का है 98155 96 3 6 में मैसेज भेजा जाए। मैसेज के द्वारा आपके कार्यक्रम हम जरूर समावेश करब। तो साथी ऐसे शिवानी ग्रिल उद्योग जो बाबा कुट्टी जो जानकी गांव पालिका 4 जो बाबा कुट्टी है वहाँ से जो शिवानी ग्रिल से जो मैसेज भेजी ने विजय कुमार वर्मा जी ये लिखी ने सर्वप्रथम संचालक मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है मियाँ जी खिचरा मलिदा खावायो जरूर ठीक है तो समझा के आवा जी आपका हम खिचरा मलिदा जरूर विजय जी खवाई भाई आप आओ जी आपके परिवार जितने हैं सब कोई आओ जी कहे से त्यौहार त्यौहार होते त्यौहार में तो आप सबके सेवा स्वागत करहीन पड़त है। तो कहने कि हमका शिवानी ग्रिल के जो विजय वर्मा जहाँ समीर के ग्रिल के सर सामान कृषक के और तमाम मेर के झाल वगैरह सब मेर सामान बनत है वहाँ से हम बोले थे मियाँ जी और मैसेज भेजा है हमका भी कव्वाली कोई अच्छा मुहर्रम के सुनाए दिया जाए ठीक है आपका भी अच्छा सुनाए दिया जी कहने कि हम अपने लड़का का अपने बीवी बच्चन का और अपने पापा का और चीने जाने वाले जत्ते साथी हैं सब लोगन का खेमराज सोनकर जो ठेकेदार हैं उनका विशेष के सुनाओ चाहते हैं धन्यवाद है आपका विजय कुमार वर्मा जी कहते हैं आंधी आवा पानी आवा तो वही वाली हाल है आज बादल भी उठा थे वो बदरी छात है घाम भी आवत है कहते हैं वही वाली हाल बरखा ग्रीत बदर के छाए कहूँ घाम तो कहूँ ना ही तो ठीक है विजय जी ऐसे कार्यक्रम में मैसेज पठौते रहा जी बस हम आप लोगों से यही कामना है कि आप लोगों का मैसेज और फ़ोन करे कि हाँ एकदम फटाफट आवा जाए सुने कैसी 415 122 के लाइन में आप अपने यार दोस्त का मुबारकबाद शुभकामना जो ये बरसों दिन के त्यौहार है तो आप दे सका जाते हैं। तो साथ ही ऐसे हमारे स्टूडियो के नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 122 के लिए नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00971 8415 122 के लाइन माओ जी ऐसे लालपुर बर्दिया जो है लालपुर बर्दिया से मैसेज भेजे नहीं सुंदर रैदास जी ये लिखी ने सब हाँ कोई साथी फोन लाइन में पहले उनका बतवा ली नहीं तब वो भागिन जी हैं नमस्कार नमस्कार हाँ जोर से बोलो हाँ आपके नाम महेश कुमार कोरी कहाँ से वार्ड नंबर 14 कौन गांव अच्छा महेश कुमार कोरी वार्ड नंबर 14 भवनियापुर हाँ महेश जी थोड़ा आवाज़ बहुत छोट आवत है त्वार मगर खाना वाना जो ना ही खाए भूखे हो नहीं
1: खाना खाए
0: हो अच्छा जो क्वेश्चन माँ हम रखा है क्वेश्चन के उत्तर दो जैसे सबसे बड़ा पंडित संसार माँ को है और सबसे गरीब संसार माँ दोस्त को है।
1: सबसे बड़ा पंडित रावण है।
0: हाँ,
1: सबसे गरीब पंडित है वो है सुदामा।
0: सबसे गरीब दोस्त को है
1: सुदामा। सुदामा
0: आपके नाम का बताओगा? महेश आए।
1: हाँ, महेश कुमार कोरी।
0: महेश कुमार कोरी आए। अच्छा, तो महेश जी मूँगफली उमफली बोएगा?
1: अभी तो पानी नहीं लिया है, अभी
0: कहाँ। हाँ, बिया वगैरह तो धरा हुई आए।
1: हाँ, बिया तो है।
0: तो हम हूँ दे हो तो एक पौवा लाए दे हमका। ठीक है, तो महेश कुमार रेडियो सुनते रहा जी, आखिरी तक रेडियो बंद ना किया जी। कहे से सही गलत को बतावा थे, को सही नहीं झूठ बताओ थे, है कि नहीं? हाँ साथी, वार्ड नंबर 14 से रहा ही महेश कुमार कोरी जो भवनियापुर से। तो इसे सुने कैसी 415-122 के लाइन में साथी जुड़ा। हाँ, तो साथी हमरे तमाम साथी लोग कार्यक्रम के एकदम नियमित श्रोता हैं। तब हमरे प्रापदिक जी इशारा भी देते हैं कि मियाँ जी समय ना आई है, आए हाथ जोड़ी भाग ली खटिया खड़ी बिस्तरा गोल आए। ठीक है साथी, अब हमरे प्रापदिक जी हाथ जोड़े 10 अंगुरी बैठे हैं, कहते हैं कि मियाँ जी अब कोई से ना बात करा जाए, ना कोई के मैसेज पढ़ा जाए, ना कोई से अब का कैसे समय भारी है। तो साथी जैसे फ़ोन करे वाले साथी मैसेज में तो बहुत जने मैसेज में पठेने, तो मैसेज के मंत्रा तो हम सही गलत नहीं माने थे, कहे से जो डायरेक्ट आपके आवाज़ जय उका हम माने थे। तो हमरे भद्रा सिंह गलत बताए ना है, भद्रा सिंह गलत बताए ना है, मकबूल जी रांझा से गलत बताए ना, हमरे महेश कुमार जो सोनखर जो ही वार्ड नंबर 14 भवनियापुर से सही बताए हैं। तो आज के भी जीता भे हैं महेश कुमार सोनखर भवनियापुर वार्ड नंबर 14 से। हाँ देखो, कहते हैं चिट्ठिया पतिया सब कोई बांटे, करमवा कोई ना बांटे हमार, का कहते हैं गवा तक है सजनवा हो गए बैरी हमार। हाँ तो हाँ तो साथी आज हमरे महेश कुमार देखो कहते हैं चलती बेरिया नज़र भर के देख ले, तो चलती बेरिया भी जीता हो गए। कहते हैं किस्मत के आगे कोई कर्म के आगे पाला कर्म नहीं चलत है साथी। तो हमरे महेश कुमार सोनकर आपका बहुत बहुत बधाई है, आप सम्मार के आई के स्टूडियो में अपन यहाँ से कूपन ले जाओ जी, और जो अपन पुरस्कार है ले जाओ जी, आपका टी शर्ट मिला है। तो साथ ही सबसे बड़ा पंडित को रहा टी शर्ट मिला है, तो साथ ही सबसे बड़ा पंडित को रहा है सबसे

कि उनके या इमाम साहेब बाबा हर कामना हर मुसीबत हर भला उनके हर दुख उनके घर से टाले सुख के नौछावर की हो, यही कामना हम देते अपने प्रावधिक चंदा जी का, अपने विश्व के रेडियो सुनने वाले जितने श्रोता दर्शक हैं सबके बाल बच्चे एकदम खुशहाल रहें, आबाद रहें, चाहे जहां भी रहें, नेपाल में रहें चाहे इलाहाबाद रहें। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि।
3: बीर डेंटल बीर डेंटल बीर डेंटल
4: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375।
6: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
7: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में ही अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
6: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
7: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बाके संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9802-825-4037।
8: नींद ना आए हमको हाए जग
6: सोता है। व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
7: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करे बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्रावधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
6: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
7: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जात है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बाके।
6: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
9: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें, बाद में यह नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए, वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
6: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया
9: सुनो, हुआं औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
10: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
9: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
11: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
2: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
3: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
4: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
5: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399।
6: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डारे, नाई ठीक आते।
7: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
8: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर, जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
7: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
10: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
11: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
10: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
11: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
10: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
11: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
10: सम्पर्क नम्बर 081-535-717। हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
11: ए, त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि। नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन, हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
10: ए, त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
11: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,
11: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुलटेक्रा आर्मी ब्यारेक सामुन्ने राप्ती रोड बाके सञ्चालक पुरन चौधरी
10: सम्पर्क नम्बर 9848206697 9858223697 र 9800143697
11: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ नियमित कानको जाँच गरौ
12: Back to back. Back to back.
13: In this song.
12: On. Stay tuned.

0: 24 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता
4: सूर्यज्योति सही प्लान
5: सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू करी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
4: सुनो बहिनी, खुशी के खबर।
5: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिक्स, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रेय और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
7: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
8: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि

0: Sir, there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss.
1: Doctor Ujjav को heel attended. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Meher Garewal. Accident है.
1: क्या नाम बता?
0: Meher Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
3: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
2: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
3: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
2: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है घर सजावे वाला सब सामान चीज एक के जगह में मिलत है।
3: और डिजाइन अपने इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
2: काहे न बनाए दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
3: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
2: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है। इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
4: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है। स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
5: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680 73 70 और 98195 0 67 82।
6: यो कृष्ण सार FM
7: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्ती के तेज़।